0: डाक्टरको परामर्श बिना औषधि सेवन नगरौ, आफ्नो स्वास्थ्य प्रति सचेत रहौ।
1: सामाजिक सचेतनाका लागि क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज।
2: टाइम चेक,
3: इट्स 7 AM।
4: दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय हाई फेस, बी प्रिपेयर्ड, सेफ्टी फर्स्ट।

0: Capital FM 92.4 Saint Percentios.
1: मित्रता स्वभाव र संस्कृतिको पुल कार्यक्रम हिमाल वारी पारी क्यापिटल मीडिया ग्रुप को विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारी पारी।

0: धार्मिक स्थल चौतारा पानीको स्रोत पुरातात्विक एवं सामाजिक संरचनाको सधैं संरक्षण गरौं।
1: सामाजिक सचेतनाका लागि क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज।
2: टाइम चेक।
3: इट्स 9 पीएम।
4: This time check is brought to you by High Face. Be prepared. Safety first.

0: धार्मिक स्थल, चौतारा, पानीको स्रोत, पुरातात्विक एवं सामाजिक संरचनाको सधैं संरक्षण गरौं।
1: सामाजिक सचेतनाका लागि क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज।
2: टाइम चेक।
3: इट्स 10 पीएम।
4: This time check is brought to you by High Face. Be prepared. Safety first.